अनक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाणप आगल भारा। हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभु की दरगह शोभा से। मन मेरे गांव हर नाम का ओला, तुझे न लागे ताता झोला। ज्यों बोहित भय सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अग्नि शीत काला हस दुख, नाम जपत मन होवत सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूरन हो।

मूर्ख दुष्ट सब शय किए हर नाम उचारा तिन आगे कोई ना ठहरे हो तिन आगे कोई

मजहब के झगड़े हैं, ये सब मतलब की बातें हैं, ये सब मतलब के झगड़े हैं। ब्राह्मण को गरूरे कौम ने इतना डुबोया है कि मैं वड्डा वा, उसकी जनीयत पे उसका मुकद्दर रोया है। हुकूमत के तशद्दुद का जमाना खत्म करना है, हकीकत कह रही है ये अफसाना खत्म करना है। उठो शहादत के लिए उन

प्रेम की सिखी आखो सतनाम ए पांच तरह की सिखी जे धंधे की सिखी इनू आखदे ने कीर्तन की अखंड पाठ की माया लैणी ये भी परवान है गुरु घर सिखी देखा देखी सिखी किसे नू वेख के जीवन बदलना ये भी परवान है सूझवान सिखी ये भी परवान है देखा देखी सिखी ये भी परवान है सिदक दी सिखी ये भी परवान है ते कलगीधर जी ने आखिया सी ये पंजे सिखियां प्रेम दी सिखी सिदक दी सूझवान देखा देखी धंधे दी ये पंजे परवान ने मेरे दाते आखो सतनाम ते नाल एक गल आखी सी पाईए पंजे तां परवान ने एक शर्त है इन्हां पंजां सिखियां दे विच प्रेम शामिल होवे इत्थे महाराज ने धंधे की सिखी का जिक्र किया जे कोई सिख पुजारी है भाई उन्हूं धंधे की सिखी प्राप्त होई है ते किहो जी धंधे की सिखी करे जी सोझी है जे कोई सिंह पुजारी आहे जे कोई सिंह पुजारी आहे सो भी पूजा बोत न गहे सारे आखो सतनाम कहंदे हदों वध पूजा ना लवे हदों वध माया ना लवे ये बड़ी सोझी दी गल जे जी गौर करे हो।

बालपुरख प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए, जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं।

दिवस है अभियाना शब्द जदों आप सुनी ओदे एक एक पंक्ति वाल ध्यान देइए ओदी विचार हिरदे विच वसाइए ता मन जेड़ा है ओ फिर भटकेगा नहीं। हर इंसान परमेश्वर की निगाह विच है क्योंकि परमेश्वर सारे आंदे नाल वसदा है। ओदी निगाह तों कोई दूर

दिखा दिहाया क्यों लहे जा सर पीतर बा। कुछ सरोवर आपा बार धरती दे देखते हैं पर एक अमृत का सरोवर इंसान दे अंदर भी है। तो साहब जी बयान करते ने जेड़ा ते प्रभु नाल जुड़ जाए ओदी तृष्णा खत्म हो जाती है क्योंकि सब सुखदाता राम है दूसर नाहिन कोई। जे सारे सुख नाम विच ने फिर जेड़ा नाम नाल जुड़ जावेगा वो भुखा किवें रह सकदा वो त्याया किस तरह रह सकदा। पर लोड़ है परमेश्वर दे नाम नाल।

मेहता कालू जी उठ के खड़े हो गए बेबे नानकी और नाल उन्हां दे पति जयराम जी वो भी आ रहे ने। बेबे नानकी वेड़े विच दाखिल होए और भज के अपने पिता मेहता कालू से गल लगे। अखां विच अथरू पै वगदे ने ते कहन लगे पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे धीए असां तां इह सोचिया कि जे तूं आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने नूं भाई अजय राम जी भी अंदर आए। मेहता कालू जी कहन लगे धीए जा अपनी मां नूं मिल उन्नू भी दिलासा दे जिहदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी सुकदे।

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लम्मे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुला और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल चो मुठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदे होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े होए और सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखल होए और आंदे आ धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार ए सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनूं उड़ीकदे हां तैनूं बड़ा मैं झिड़किया तैनूं मैं एक वारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल धन गुरु नानक साहब। माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ए चोला पा लै आप ही फिर कह उठते ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखे ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलिया सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग कुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्मदिन ते चोला सी के रखती है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें मैं फिर मिलांगी।

दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना सचखंड बना। ये कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषां दे जीवन वाल देखने हैं। वो पति भी ने पुत्र भी ने वो भरा भी ने वो सज्जन मित्र भी ने वो गुरु भी ने वो पीर भी ने उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के अस भी अपने मना विच प्यार रखी साढ़े मन विच प्यार होवेगा अपने घरदियां नू प्यार देंगे लोकां नू प्यार देंगे ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

महूरत देख के कर दे। कर बनाना होवे कर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे या कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी दा काम होवे, ता इंसान सारिया तो पहला दिन देखदा, तारीख देखदा, महीना देखदा, साल देखदा, मुहूर्त देखदा। ए काम इस महीने इस तारीख नू करना है, इस वेले करना है, ताकि सारिया नू बुला लवां, किधरे कोई नाराज ना हो जावे कि मैनू नहीं बुलाया। गुरु साहिब जी कहंदे ने, ऐ इंसान तू हर काम महूरत ते कीता, दिन देख के कीता, साल देख के कीता, पर मरन लगिया तू कोई महूरत ना देखिया, कोई तारीख ना देखी, ए ना सोचिया इस दिन इस तारीख नू इस महीने इस मुहूर्त नू मरा, सारिया नू दस दिया ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि मैनू नहीं बुलाया। साहब जी कहंदे ने, ऐ इंसान हर काम तू मुहूर्त दे कर सकदा है, पर जड़ी मौत है ए मुहूर्त नहीं देखण देंदी। मरण ना मुहूर्त पुछया, पुछी थित ना वार, मौत ने ना दिन देखण देता, ना तरीक देखण देती, ना कोई महीना देखण देता। बस इन्ना ही पता लगा, चंगा भला सारे परिवार नूं मिल के घरों तुरिया कि मैं चलदा आ जावांगा वापस, घरों ते तुर पिया, परिवार नूं मिल के बड़ा खुश है, पर की पता सी कि जांदियां जांदियां रस्ते विच ही परमेश्वर दा हुक्म आ जाणा। घर वाले घर उड़ीकदे पए ने, आ जाणगे शाम नूं, मेल हो जाएगा, पर क्या पता सी उस तां वापस नहीं आना, पर उहदी मौत दा सुनेहा जरूर आ गया। रस्ते विच जांदे आ हुक्म आ गया परमेश्वर दा, आया हुक्म पार ब्रह्म का, उस अल्लाह उस पार ब्रह्म दा हुक्म आ गया, जांदियां जांदियां रस्ते विच ही हुक्म आया मौत हो गई। साहिब जी कहंदे ने, बड़ा कुछ बनाया, हाली मन दे चाह भी पूरे ना होए, पर जद हुक्म आया तां छोड़ चलिया एक दिहाड़े, जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पे है। ना पत्नी दा ख्याल, ना बच्चियां दा, ना रिश्तेदारां दा, ना सजना मित्रां दा कि आखरी वेले किसे नूं मिल ही लवां, नहीं। परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढ़ है, जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नूं मिलण दा समा नहीं मिलदा, हुक्म बड़ा डाढ़ है। आया हुक्म पार ब्रह्म का, छोड़ चलिया एक दिहाड़े, हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तू अपने प्यारियां नूं रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

फराज मिलक जोबन ग्रैसो बा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड गया राज भाग जोबन जवानी ग्रह केंद्र घर अपना घर शोभा सोना रूप सारा कुछ छड के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार घोड़े लाल लाख बयानी हाथी घोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चाह नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

बंके कहते ने पति जिन्ना दे पति मर गए जिन्ना वापस नहीं आना उन औरतां दे बारे साहब जी कहते ने तेन क्यों रहन विहानी उन्हां दियां रातां हुण किवें बीतन क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा। साहब जी बाणी विच बयान करदे ने ओ पत्नी किवें जीवन बितावे जिहदा पति एक वारी गया ते मुड़ के वापस नहीं आया।

कदी हसो ना, क्यों? मौत एक सच्चाई है, जीवन झूठ है। असी लोग मौत नू भुला देने हैं, पर मौत इंसान नू कदी नहीं भुलदी। समय नाल ओ आके ले जांदी, क्योंकि उदा हुक्म बड़ा डर है। पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है, तन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने। औरत दे दर्द नू समझिया, अपने आप नू फिर कहन लगे, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, तू मेरा पति है। जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं, तू मेरा पति है, तेरे बगैर मेरा जीवन

कर दें इस वास्ते के है कि मां बाप नियामत ने विछोड़ा किसे दा भी पवे विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। मां मरे प्यो मरे पुत्र मरे पत्नी मरे चाहे पति मरे पर साहब जी कहंदे ने ए भी सच है मरना जरूर है ए भी सच है कि दुख सहना बड़ा औखा है। इसे वास्ते ए बाणी दिती है कि परमेश्वर दा सिमरन करो दुनिया नू नाशवान समझो ताकि इस दुख नू तुसी सह सको ए समझ सको ए हुकम सी जिड़ा आया है उन्हें जाना जरूर है एक दिन असी भी जाना है ताकि दुनिया दे नाल इन्ना मोह ना करिए कि मरण लगे हैं।

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान ये चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावा, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। इंसान लड़ाइयां जितता है, तरक्कियां करता है, बड़ा कुछ बना भी लैंदा है, ये भी कहता है हों मारो हों बंदो छोड़ो मुख ते एव बबाड़े। मुख कहंदे ने मोह नूं, मोह तूं इह भी कहंदा है मैं जिन्हों चाहवां उन्हों मार सकदा, जिन्हों चाहवां उन्हों छड़ सकदा। पर साहिब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल भी सलाह करके सौंदा है, पर उदों ही पता लगदा है

राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखण हारे। खेद करे अर बहुत संतावे, आयो शरण तुहारे। कर कर हार्यो अनक बहु पाती, छोटे कथु नाही। एक बात सुनता की ओटा, साथ संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे, तिनते धीरज पाया। संती मंत दियो मोहे निर्भव, गुर का शब्द कमाया। जीत ले ओए महाबिखादी, सहज सुहेली बाणी। कहो नानक मन पया प्रगासा, पया पद निर्वाणी।

ये पावन शब्द पावन राग साडे सत्कार योग प्रोफेसर साहब प्रोफेसर अमर सिंह जी भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब भाई दया सिंह जी पटना साहब वाल दे प्राता साहब ने वो भी गुरु की हजूरी विच सुशोभित ने साडे हंसलो तो आए दलजीत सिंह जी वैनकूवर तो वीर जी आए ने तो बड़ा दर्शनदार संगत दे होए ने तो संगत वालों हुक्म आया सी कि राग 10 मिनट जरा ज्यादा लाने ने तो ये सोरठ राग दे विच आप जी ने शब्द सरवण किया है तो आओ दो तीन रीतां जरूर गायन करनिया सन पर संगत वालों हुक्म है कि एक दो रागां दी बंदिशां जरूर सरवण करवाउणियां हन आओ इस तों पहला एक रीत फिर गायन करांगे पहला आओ एक नौ मात्र दी बंदिश है आप जी दे सन्मुख बहुत ही सुंदर है पुरातन चीज है और बड़े प्यार नाल सरवण करो।